0: थो रेडियो नेपालका नेपाल भाषा समाचार र जिपुएस पाखेनाथिस थौ नेपाल सम्बत चिन्छ सौ पिको द गुलागा सापारु दपतिक भादौ कृष्ण पारु निसे अस्मितक गुणतक हनिगु सापारो थौ तजिक हनाचुङदो दक्षि मरुपिनीगु लुमती मनोतेत साधेका थो नख हनि सा जुपी थथगु देशे चाहिलेगु चलन्दो उमित दुरु पासी मरिचरी बजी तुसी केगु नाप धेवा दान्याइगु चलन्दो जुजु प्रताप मल्ल क्या मधुमथ लानिया त थपिन्छक मखु सकल मनु त नसिनाचुङ्गु धका शान्ति याके त थथे ज्याजो न्याकुगु धाई अथे हे निके त नथिति कथ ख्याली प्याख रामेन हालिगु चलन्दु थो नख ए येल खोप किपु नाप बनेपा धौख्य पन्ती बारबिसे त्रिशुली दोलखा खोटाङ भोजपुर चैनपुर इलाम धरान विराटनगर वीरगन्ज हेटौँडा ओ पोखरा तजिक हनिगु चलन्दु थोए झोले खोपे किन्ताङ किसी एले मत्या किप्ली बाचा हिलिगु चलन्दु ए महानगरपालिका पोटेकसी खुसी बा वया देशे विपद ज्याचुङ इले ए महानगरपालिका सकता ज्याकु व स्वापु दुगु निकाय नछुन कथया ज्याजो मया त परिपौ जारी यागुदु ए महानगरपालिका प्रशासन विभागीय प्रमुख महेश कुमार काफ्लेल हाचे तया दिगु परिपत्रे प्राकृतिक प्रकोप या हुनु रसुवा नुवाकोट धादिङ लिसे तिथि जिल्ला तथङ्गु मानवीय क्षति व सङ्कट या हुने दे न्यङ्क सोकाकुल ज्याचुङ इले ए महानगरीय विभाग सचिवालय आयोजना इकाइ वडा ज्याकुतिले से स्वापुदुगो निकाय न गुगु न कथा या मनोरञ्जनात्मक व औपचारिक ज्याजो मया त व मया कत उज कत सकसित ध्यानकर्षण याकु ख नेतना तगुदु गुला पर्व या परम्परा कथ थौ सापर्यो दि ए गुला बाज खल पुच पिन्छ बही द सोनिगु जुगुदु थोपाले विनाशकारी खुसी बा या देहे सोकाकुल जुया चुङ्गुली गुला बाज या ग्वारा मथासे भजनमे हाला वैद्य सोनिगु निने ए या कीर्तिपुण्य महाविहार कोइती बाहन यागु ख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह देश कठिन इले दुगुली बाढी प्रभावित पुक्क मनुतेगु छे छे सरकार थेनेगु प्रतिबद्धता पुङ्कादिगु दु फोटेकुसी वगु खुसी बा या लिपाङ्गु अवस्थाबारे थगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाखे मिग सनिले जानकारी यनादिसे वेक्ल थथे इनाप यनादिगु ख रसुवा वगु खुसी बा या हुने सिपनिगु ल्या न्यास व ने गुम थेङ्गु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण धागु ख प्राधिकरण कथ रसुवा चिन्नीम नुवाकोटे सिन हेम धादिङे पिम गोर्खा पि खुम नवलप्रासी पूर्वे सचिव ने पेम चितवने निस व सु सोम त नौले सुम व नवलप्रासी पश्चिमे निन हेम सिम लुगु धागुदो आतक चिन्गुस व नि पेम तनाचोङ्गुदो नेपाल प्रहरिया नि च्याम नेपाली सेना या पि न्याम सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल या चिन सोम पन्सार ज्याकु या चिन न्याम अध्यागमन ज्याकु या चिन्याम रसुवा पखे सचिव खुइ छम नुवाकडे छम जल विद्युत आयोजना ज्याना चोपी गुस व सुई सोम मकवानपुर ए चुनिपी खुइ खुम स्वापुई मधुगु धागुदो अथे विदेशी नागरिक न्यास व चिन्हेम नेपाल चाहिले त वोपि गैरावसे नेपामी सचिव निन्हेम लाङताङ राष्ट्रिय निकुञ्ज पाखे सोम तनाचोङ्गु धागुदु अथे सचिव नि गुम विदेशी नागरिक या त हेलिकप्टर उद्धार यागुदु आतक पेदो पेस व निम उद्धार यागु धागुदु जलविद्युत या सुरुङ पाखे सचिव गुई छम हेलिकप्टर पाखे न्यास व चिन्हेम उद्धार यागुदु थोए दोथि बाढी प्रभावित लागा या उद्धार या नीति चिन यादो सुरक्षाकर्मी परिचालन जुगुदु उद्धार या नीति आतक नेपाली सेना व निजी याना चिन खुग हेलिकप्टर पाखे सचि उडान यागु प्राधिकरण थागुदु पोटुखुसी खुसी विनाशकारी खुसी बाउ या थिति जिल्ला यापी मुनुत मधुगुदुसा बेपत्ता जुयाचुङ्गुदु थुगु खुसीबाला दक्ले अपो लिचो रसुवा त्रिशुली धादिङ नुवाकोट लिसे पोटिकुसिया खुसीबा वैगु जिल्ला लिचो लागु ख अथे गुनपुनी न्ह धार्मिक परम्परा कथन सिलु तुर्थे चाइल त ओपिन मडुगु दु धासा बेपता जुगु दु थोए झोले हाइड्रो पावर ज्याइना चुम खोपया इन्जिनियर सत्य सुन्दर प्रजापति त्रिशुलिया छगु हाइड्रो पावर स्न्याचुङ अवस्था लुयावगुदु मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका नयाँ बानेश्वर शाखा कर्मचारी विजेता अवाली ओ माछा पोखरी शाखा कर्मचारी सुन्दरी श्रेष्ठ तनाचुङगुदु अथे खोपया जीवन जोन छे राजकुमार सुवाल रबिना तुलसी बाख्यो स्विटी फाजु मनिल कास्त तनाचुङदु तनाचुङ पिस इलु तीर्थभूनिगु झोले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क कर्मचारी गोपाल मर्जन लानाचुङदु थोया झोले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अप्पर त्रिशुली थ्री ए पावर हाउस ए सुपरभाइजर या ज्या इना चुनादिमा किपु पाङ्गाया कबीर मर्जन तनाचुङ दुधासा सिलु तीर्थभूनिगु झोले किपु नगरपालिका चार वडा या न्याम खुम बासिन्दा पिन तनाचुङ दु चीन सरकार सुइगु बेली ब्रिज देखेगु घोषणा यागुदु चीन निदो ओ निरो सीम व्यवस्थापन या नीति यर टाइट ब्याग न ग्वाली यागु थागु अर्थ मन्त्रालय थागु दु स्विजरल्यान्ड छगु मिलियन स्विस फ्रान्क संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पाखे व्यवस्थापन खर्च या त ग्वाली यागु थागु दु अथे अक्सफार्म निस सुचु पिचु या हलजोल प्याकेट ओ दोछी ल पिचुकेगु एक्वा ट्वाइ ट्याब्लेट ल लाइगु धागुदु अक्सफार्म छगु कोर खुइगु लाख हलजुल बितेङ्गु धागुदु डिएसए नेपाल धादिङे सच्ची गम्बुर निगु पी क्याक्स निगु बेल्चा निगु पन्जा व खुग बाकस मार्क्स बी थङ्कुगु दु अथे सेभ द चिल्ड्रेन नोवा कोटन निसो हलजुल इना बी थङ्कुगु धागुदु भोटिकोसी सम्पर्कविहीन जुपी अप्पर त्रिशुली ए जलविद्युत आयोजना या चिनसम्म कर्मचारी लुयावगुदु नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रवक्ता राजन ढकाल कथ सञ्जु कुमार केसी मोहन गेवाली रविन्द्र भट्ट सुरेश चौधरी विष्णु भण्डारी खेमराज भट्टराई सौगोरत यादव जितेन्द्र गुप्ता रोवन पराजुली भीमसेन थापा ओ विक्रम माझी स्वापुले वगु धागु ख भोटिकोसी ओ त्रिशुली खुसी वगु खुसी बाला दिनाचुङ्गु पृथ्वी राज मार्ग सञ्चालन वगुदु यहाँ उपत्यका ट्राफिक ज्याको या कथ ले सुचुपसु या धाङका ल न्यागु प्रहरी उपरीक्षक नरेश राज सुवेदी धाइदिगु ख प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद ज्याको खुसीबा या नामे अनाधिकृत दाम ममुङके त इनाप यागुदु मुनु पुछ व सस्ता अनाधिकृत क्युआर कोड ओ मुनुतेगु खाता नम्बर सार्वजनिक यासे दा मुङका चोङ्गु धाइगु खप्या वे ढङ्का प्रधानमन्त्री या ज्याकु गम्भीर धारका सु जुगु धासे मन्त्री परिषद या ज्याकु या प्रवक्ता हेमराज अर्याले थथे विज्ञप्ति पिठनादिगु ख रसुवा या भोटुकुसी खुसी भदौ 10 गते जुगु खुसीबा लागा या नीति नेपाल सरकार थ्यौ मठन हेगु दा फ्या धङ्कुगुदु प्राधिकरण कथ रसुवा या उत्तर गया गोसाईकुण्ड कालिका ओ आम छोदाङ गाउँपालिका नुवाकोट या विदुर ओ बेलकोट नगरपालिका तारकेश्वर किसपाङ गाउँपालिका धादिङ या बेनीघाट रोराङ गजुरी गल्छी ओ सिद्धलेख गाउँपालिका गोर्खा या गण्डकी गाउँपालिका ओ तनहु या देवीघाट ओ आबुखैरिनी जुगु क्षति सोया राहत इनेगु धागुदु नेपाल उद्योग परिसङ्घ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषे न्यागु करोड निगुगु लाख दा लहागुदु परिसङ्घ नायक वीरेन्द्रराज पाण्डे अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले या त चेक लल्ना दिगु ख गण्डकी प्रदेश सरकार पोटिकुसी बाढीपिधि या ग्वालिया नीति पेङ्गु कोरोड दा फ्यागुदु अथे लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रधानमन्त्री देवको उद्धार कोषे सङ्गु कोरोड दा ग्वाली यागुदु थोए झोले सुरप्रसिन प्रदेश सरकार निगु करोड दा बिगु कोचुगुदु थ थोए झोले मध्यपुर थिमी नगरपालिका पोटुकोसी खुसीबाला प्रभा जुमिङ्गु राहत उद्धार व पुनस्थापना नीति प्रधानमन्त्री राहत कोषे ने छगु लाग ग्वाली यागु निन्ने यागु नगर प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ अध्यादिगुदु प्रधानमन्त्री दैव्य प्रकोप उद्धार कोषे राजी राणा छगु करोड गुगु लाख आर्थिक ग्वाली यानादिगुदु थोदा रात कोषे मनुपाखे वोगु दक्ले तरहङ्गु ख नरवया जुजु हेराल चे गुदया बैसे अस्पताले मिग अमन्त राजधानी ओस्लोया राष्ट्रिय अस्पतालले वेक शान्ति नक्सा मधुगु राजदरबार स्रोत धागुदु सन् 14 सदी थुङ्का वेक नर्वे बुम दक्ले नापाम जुजुख वैगु शुक्रबार वेक क्या हाकन यात सरकार भाला ललहाइगु च्याजोदु थोए दोती बेलायत या जुजु चार्ल्स व स्विडेन या जुजु कार्ल नर्वे जुजु मधुगुली बिचा ह्याकादिगुदु थौ बागमती गण्डकी लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागा आपल थासे व मध्य प्रदेश नाप कोशी प्रदेश या तराई लागा या चुचु थासे नन्याना वा वैगु सम्भावना दु कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा कर्णाली प्रदेश या पहाडी लागा नाप लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी व तराई लागा या छगुनीको थासे मधिको वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थागु ख मिगो सोनिगले सुइगु डिग्री सेल्सियस या क्वाज लुगु ख धासा थौन थोय ल्याख क्वाइगु तुकमा यागुदु नेपाल भाषी बुख कोचाल शुभ
1: सवारी क्षमता भन्दा बढी यात्रु नचढाउँ र चढ्न नदेऊ अन्यथा दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ
2: नेपाल सरकार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सडक विभाग

सु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिर रेथाङ निधा झेनमुला ङ इन्दिरा थिङ रसवारी खाबा भालसे तिनी धिनीला सोम न्यासी सोमचुई मिनेट धोना ग्यार्जा डुसे मेन्दो डुचुई कु ला सिबा लुहिरो स्याप्पा मुला चुनिका डेरी रसवारी मेन्दो चुई सोम नुवाकोट री मेन्दो ब्लिचुई गिक धादिङ री मेन्दो ब्लिचुई कु चितोन डी ग्यार्जा निसे ब्लिचुई ब्रे गोर्खारी मेन्दो गाचुई ब्ली तनहोरी सोमचुई गिक नबल परासी स्यार्दी ग्यार्जा गिक्से मेन्दो गाचुई ब्रे थेन नबल परासी नुप्री मेन्दो निश्चुई गा लासी ग्यार्जा डुसे मेन्दो कुचुई ढुला सिबा लुहिरो स्याप्पा हिन्ला प्रहरी से भाला जोखिमरी मुबा लोलो लोलो जोङला दिम थेमेदा सुरक्षित घ्लारी थान्बा नाम्साला मिनिला रोरी उद्धार थेन माइबा गेनोन लाबान मुला चुराङ लासिन रसवाला भोटे कोसी भालसे प्रभावित कादेला उद्धारला धुरी नेपाली सेनाला हेलिकप्टर से तिनी दिनी धोना मेन्दो ब्लिचुई सोम स्यान्दो युल्ला मिनी छ्याम ग्यार्जा निसे मेन्दो ब्रे मिनिदा त्रिशुली सोम जलविद्युत आयोजनाला सुरुङ्याम उद्धार लाभा मुला सुरुङरी मुबा मेन्दो सोमची ब्रे चिनिया थिएन मेन्दो गा भारतीयला छ्याम ग्यार्जा निसे मेन्दो ब्रेला उद्धार लाभा हिन्ला बिसी नेपाली सेना से पाङबा मुला मोक्युल रेडक्रस समिति आइसिआरसीला मापदण्ड अनुसार चितोन्डी रूपा सिबा लुहिरो सारी क्याबा तयारी लाभनमुला सिबा लुहिरो क्याबारी भारत भरतपुर महानगरपालिका गिक देवघाटला रिरी खाल्डो ख्वाबा गे लाभनमुला निचुई कु सिबा लुहिरो होल्डिङ सेन्टर थिएन लोलो लोलो लुई गेन्दुन्डी थान्बा मुला बिसी जोङला सिडियो गणेश अरियालसे सुङबा मुला प्रशासन से पाङबा अनुसार होल्डिङ सेन्टर लुई गेन्दुन कादेरी थिएन गान्धी गाम तेबा सिबा लुहिरो कादे थाङखाबारी तिबा मुला सिबा लुहिरो कादे भरतपुर महानगरपालिका गिक देवघाटला खुल्ला घ्लारी थान्बा तयारी लाबा मुला डाक्टर कादेसे भोटे कोसी भाल प्रभावित थुम्री संक्रमणला जोखिम लेबारी खामला विमान सतर्कताबारी मोकोन्दा मैजेन लाबा मुला दारेम कोलेसे सिबा मिनी थेन सेमच्यान कादे नाइबारी खाम्बा ताबासे थाङ खासी याम लेबारी खामला विमान सतर्कताबारी डाक्टर कादेसे मोकोन्दा मैजेन लाबा मुला संक्रामक याम विशेषज्ञ डाक्टर शेर बहादुर पुन्से भोटे कोसी भाल ग्याम प्रभावित थुम्री उद्धार थिएन राहत छ्याम लुई सुरक्षा दा नोन प्राथमिकता री थान्दोला बिसी सुङबा मुला भाल लिछा ढुई निबान लामा क्युई दूषित ताबा चाबा से चाबा आताबा फोहर लेसी लामखुट्टे थेन विषादी भालङ भुलुङ लेबा ताबासे संक्रमण लोन लेसी महामारी ताबारी खाम्बा ताबासे सतर्क ताबारी सुङबा मुला काइब्लोन राहत कोश्री तिलमा मुना धोना नेपाली टाङ्गा अर्ब ब्ली करोड सोमची ब्रे लाख ब्रे तोङ गाचुई नि सिका निसे नाचुई निथेन लाख डु तोङ ब्रेसे ग्यार्जा डुसे चुइब्रे अमेरिकी डलर छम्मा ताबा मुला बिसी काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङला गेजाङसे पाङबा मुला चुराङला छिन रसुवा नुवाकोट थेन धादिङला भाल प्रभावित दा माइबा उद्धार राहा थेन नोङबा सेकादे सोबारी राङलान ह्युल थेन स्यान्दो ह्युल ग्याम ए डिबिसे गा मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान थेन प्राविधिक रोदा लाख घिक्से तोङ नाचुई डलर थेन विश्व ब्याङ्कसे ग्यार्जा गिक्से डुचुई निस मिलियन डलर सहुलियत छ्याई रो पिनबा घोषणा लाभा मुला अमेरिका से लाख गाथेन अस्ट्रेलिया से मिलियन गिक अमेरिकी डलर रो लाभा ताबा मुला भारत ग्याम गाचुई निस दशमलव घाटन मिनिदा तोबा से कादेथेन मान याङबा मुला बिसाम चीन से गोर सोमचुई बेली ब्रिज थेन सिवा लुरो व्यवस्थापन लाभा से कादे रो लाभा ताबा मुला चुराङ लासिन रेड क्रस थेन रेड क्रिसेन्ट महासङ्घसे दातेदा करोड चुई भ्रेसे लाख कुचुई ढु टाङ्गा रो लाबाबिची पाङबा मुला भोटे कोसी गान्धीरी बुधबार स्योरी खाबा भालसे लामा बन्द ताबा रसवाला सडक ग्यालाम दोषी सेङबा मुला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण से पाङबा अनुसार याम्बुला टोखा छहरे खड्क बापुर आप्र नर्जा लाज्याङ सरमथली पाटी खर्क ताबान बोगटी टार कालिका स्थान धुन्छे दोनाला सडक घ्यालामरी जाजा ब्ली पाङरे मोटर सेङबारी ढिक्पा लासी सडक
ग्यालाम सेङ बाहिला होजा ग्यालाम सेङ बा छ्याम रसुवा दोषी सडक ग्यालाम थेन थुई बा मुला बिसी प्राधिकरण से पाङ बा मुला भोटे कोसी गान्धीरी खाबा भालसे लामा रसुवा नुवाकोट धादिङ गोर्खाला छ्याम स्यान्दो जोङका देरी नोन ग्रेन छेती ताबा मुला भोटे कोसी गान्धीरी खाबा भालसेलामा रसुवा थिएन नुवाकोटला हाइड्रो पावरला सुरुङ रि फस्तीबा मिनी कादेला उद्धार लबारी सरकारला रोरी ङेङ्गोर ह्युलकादे भारत थिएन चिनला टनेल रेस्क्यू टिम सेङबा मुला नेपाली सेना से राङलान स्रोतेन साधन ग्याम सुरुङरी फस्तीबा मिनी कादे माइबा थिएन उद्धार लागे थान्सा लासी चिसाई नोन सुङ थुन्दीबा सुरुङ कादेरी फस्तीबा सोमोन मिनी कादेला उद्धार थिएन सिबा कादेला सिबा लुइरो घोसेबारी डिएन जाँच लाबारी थिएन सिबा मिनी थान्बा ग्ला व्यवस्था पण्डी भारत थिएन चिनला रो किन्बा मुलाबिसी रोङसा ब्लोनखाङला सुङबोन लोक बहादुर पौडेल छेत्री से रेडियो नेपाल दा सुङबा मुला रोङसा ब्लोनखाङला सुङबोन से सुङबा अनुसार भोटे कोसी गान्धीला भाल्डी पर्दीबा लोलो लोलो ह्युल्ला ग्यार्जा गिक्से मेन्दो निचुई विमान लाना स्यान्दो ह्युल्ला मिनिदा उद्धार लासी झिन्बा मुला बिसामा दाते नोन ग्यार्जा गा बिमा लाना मिनी माबा मुला त्रिशुली गान्धीरी भदौ चुइला कुनु खाबा भालसे लामा नुवाकोटरी लाना मिनी थिएन भौतिक क्षति नोन ताबा मुला जोङ प्रशासन गेजाङ नुवाकोट से तिनी स्योला निस ङ्यामा धोना याङबा विवरण्डी भाल ग्याम मेन्दो गाँचुई घिक मिनी माबा मुला बिसाम ग्यार्जा ब्लिसे मेन्दो गाँचुई मिनी सिबा मुला प्रशासन से फाङबा अनुसार सिबा मेन्दो गाँचुई घिकला सिबा लुइरो दाते दोना मोसेबारी खाम्बा आरे भालग्याम मेन्दो ब्ली चुई घाइते ताबा मुला लाना राङबा विदुर नगरपालिका भालग्याम विदुर नगरपालिका बेलकोटगढी नगरपालिका तारकेश्वर गाउँपालिका थिएन किस्पाङ गाउँपालिका लाना प्रभावित ताबा मुला भालसे जोङला ग्यार्जा निस हेन्से ग्यार्जा ब्रे दिम्री छेती सोबा मान्बा मुला भालसे गोरब्रे सरकारी गेजाङला दिमखाङरी छेती दोबा मुला बिसाम सानाम विकास बेङ्गला दिमखाङ नोन प्रभावित ताबा मुला सडक ग्यालाम थिएन चाम संरचनारी ग्रेन छेती सोबा मुला रसुवारी तेनी स्योरी भाल ग्याम घाइते ताबादा उद्धार लासी याम्बु बाबा कादेरी मेन्दो सोम चुइदा दाते स्यान स्यान तिलाई अस्पताल कादेरी थान्सी मान लाबान मुला जोङ प्रहरी गेजाङ प्रशासे दाते विपदला धुइरी आधिकारिक वेबसाइट कि प्रभावित सामाजिक सञ्जाल ग्याम्से जेखेन रो लाबारी मोइजेन लाबा मुला गेजाङसे तिनी सूचना छिपान लोलो लोलो मिनी कादेसे सामाजिक सञ्जाल ग्याम काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोष वा काइब्लोन राहत कोषला मिन्डी व्यक्तिगत बैङ्क खाता वा ई वालेट री टाङ्गा रिबा थिएन फर्जी राहत रिबा गे लाबासे चु ग्याम सोबारी मोकोन्दा मोइजेन लाबा हिला रसुवा नुवाकोट छ्याम स्यान्दो थुम्री बुधबार निबा भाल लिचा रुङसा ब्लोन सिसिर खनाल सर्बिया कोरबारी आनिबा ताबा मुला ब्लोन खनाल असंलग्न आन्दोलन नामला ग्रेन स्तरीय वाल्डी पो किनबारी नाङ्गर सर्बियाला ग्याल्सा बेल ग्रेट निबा गेखोर मुबा स्यान्सिबान मुबा सान्ग्युर जिन्जी फ्याफुल्ला

680,618 अमेरिकी डॉलर भी जमा हुआ है। रसुआ के भोटेकोशी नदी में आए सैलाब की जद में आकर जाम बहकाने वाली चितवन तक पहुंची लाशों को दफन करने की तैयारी की गई है। ज़िले इंतजामिया दफ्तर में आज मुनक़िदा ज़िली हिफाजती कमेटी के अजलास ने लाशें बदबूदार बनती जाने के बाद वबा नहीं फैलने देने की गर्ज से उन लाशों को दफन करने का फैसला किया है। CDO गणेश अरियाल ने बताया कि नारानी और त्रिशूली नदी के साहली हिस्से से दस्तियाब 233 लाशों में से सिर्फ 6 लाशों की शनाख्त हुई है, जबकि बकिया 27 लाशों को भरतपुर अस्पताल और आर्जी मुर्दाखाना में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ज़िले इंतजामिया के मुताबिक होल्डिंग सेंटर, तिब्बी इदारों और नदी के साहली इलाकों से दस्तियाब लाशों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से सड़ने लगे हैं और चंद लाशें शनाख्त नहीं किए जा सकने की हालत को पहुँच चुकी हैं। CDO अरियाल ने बताया कि फौरी बंदोबस्त के जरिए रखी गई लाशें बदबूदार बनते जाने के बाद वबा फैल सकने के तिब्बी शोबों के माहरीन की राय के मुताबिक ज़िली हिफाजती कमेटी के अजलास ने उन लाशों को ज़मीन में दफन करने का फैसला किया है। दस्तियाब लाशों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दफन करने का बंदोबस्त भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 1 देवघाट वाके खुली जगह में करने की तैयारी की गई है। डॉक्टरों ने भोटेकोशी सैलाब मुतासर इलाकों में वक्त के साथ वबा का ख़तरा बढ़ सकने की बात बताते हुए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील की है। मरने वाले अफराद और मुर्दा जानवरों की लाशें आहिस्ता आहिस्ता सड़ना शुरू होने की वजह से बदबू और बीमारी फैल सकने की बात कहते हुए डॉक्टरों ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की सबसे अपील की है। अमराज मुतअद्दी के माहिर डॉक्टर शेर बहादुर पुन ने कहा है कि भोटेकोशी सैलाब मुतासर इलाकों में इमदाद और राहत रसानी के साथ साथ तिब्बी हिफाजत को भी तरजीहात में रखने की ज़रूरत है। सैलाब के बाद वक्त के साथ आलूदा पानी, गैर महफूज खाने पीने, कचरा और मच्छरों में इजाफा होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की वबा फैल सकने की बात बताते हुए उन्होंने इसको लेकर सबने खबरदार रहने पर जोर दिया है। सैलाब की वजह से बेघर हुए अफराद के खाने और पीने का बंदोबस्त करना चैलेंज से भरपूर काम होने की बात बताते हुए उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि इस तरफ हुकूमत ने ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। भोटेकोशी नदी में आए सैलाब की वजह से रसुआ नुआकोट के पनबिजली मंसूबा की सुरंग में फंसे अफराद की मदद के लिए हुकूमत के साथ की एकजहती पर पड़ोसी ममालिक भारत और चीन की टनल रेस्क्यू टीम मुतहरक की गई है। वजारत खारजा के तर्जमान लोक बहादुर पौड़ेल छेत्री ने रेडियो नेपाल को जानकारी दी है कि नेपाली फ़ौज ने खुद के वसायल और ज़राए से सुरंग में फंसे शहरियों की तलाश और इमदाद के काम को जारी रखा है। ताहम मुंह बंद हुई सुरंगों में फंसे जिंदा शहरियों की मदद और मरने वालों की लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट और मुर्दा खाना के इंतजाम के लिए भारत और चीन की मदद ली गई है। वजारत खारजा के माविन नाजिम और तर्जमान पौड़ेल ने बताया कि भोटेकोशी सैलाब मुतासरीन की इमदाद, राहत रसानी और बहाली नौ के लिए भारत और चीन समेत के ममालिक और मुख्तलिफ बैन अवी इमदादी इदारों और तंजीमों से ताउन हासिल हो रहा है। तर्जमान पौड़ेल के मुताबिक भोटेकोशी नदी में आए सैलाब की जद में आए मुख्तलिफ ممالک کے 120 سے زائد غیر ملکی شہریوں کو بچا لیا گیا ہے، تاہم مزید تقریباً 500 غیر ملکی شہری اب بھی لاپتہ ہیں۔ دری اسنا بھوٹیکوشی سیلاب متاثرین کی امداد کے دوران نیپالی فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آج دوپہر تک 40 غیر ملکیوں سمیت 208 شہریوں کے ترشلی پن بجلی منصوبہ کی سرنگ سے بچا لیا گیا ہے۔ نیپالی فوج کے مطابق سرنگ میں پھنسے 38 چینیوں اور 5 بھارتی شہریوں سمیت 208 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق امدادی کام کے لیے متحرک مشترکہ ٹیم ڈرلنگ مشین سمیت کے آلات کا استعمال کر کے سرنگ کا خارجی حصہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ششر خنال نے کہا ہے کہ بھوٹیکوشی ندی میں آئے سیلاب سے بڑا جانی و مالی خسارہ ہونے کی وجہ سے تعمیر نو اور بحالی نو کے کاموں میں بین الاقوامی تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ وزارت خارجہ میں آج اہتمام کردہ اخباری کانفرنس میں وزیر خارجہ خنال نے کہا کہ گزشتہ بدھ کو آئے سیلاب اور تودا کی وجہ سے نیپال میں بڑا جانی و مالی نقصان ہونے کے باعث بھی آفات متاثرہ علاقوں کے لیے بین الاقوامی امداد ناگزیر ہے۔ وزیر خنال نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ آفات کا ایک متعینہ مرحلہ ہونے کی وجہ سے بھی حکومت کی موجودہ ترجیح امدادی کام اور ممکن ہونے تک نیپالی اور غیر ملکی شہریوں کی جان بچانے پر مرکوز ہے۔ ساتھ ہی وزیر خنال نے بتایا کہ عطیہ دہندگان کانفرنس کے موضوع پر وزارت خارجہ اور وزارت مالیات کے درمیان ضروری یکجہتی کر کے فیصلہ لیا جائے گا۔
رسوا اور نواکوٹ سمیت کے علاقوں میں گزشتہ بدھ کو آئے تباہ کن سیلاب کے بعد وزیر خارجہ ششیر خنال سربیا کے دورے پر نہیں جائیں گے۔ نا وابستہ احتجاج کے اعلیٰ سطحی کمیموریٹو جلسے میں

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। मधेसक मिथिला क्षेत्रमे मनाओल जायवला सांस्कृतिक पर्व झुलनोत्सव सम्पन्न भेल अछि। सावन मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथिक दिनसँ शुरू होमयवला ई पर्व सावन मास पूर्णिमाक मध्य रातिमे सम्पन्न भेल। सावन शुक्ल पक्षक पछिला 13 दिन मिथिला क्षेत्रमे मनाओल जायवला झूला पर्वमे परम्परा अनुसार भगवान विष्णु आ देवी लक्ष्मीक प्रतिमा झुलाओल जाइत अछि। पूर्णिमाक मध्य राति पश्चात झूला के डोरी काटिके पर्व सम्पन्न करबाक चलन रहल अछि। भगवान विष्णु आ भगवती लक्ष्मीक आराधनामे आधारित ई पर्व मिथिलाक मठ मंदिरमे सामूहिक रूपमे मनाओल जाइत अछि। विष्णु लक्ष्मीक अवतार मानल जायवला राम सीता तथा कृष्ण राधाक प्रतिमाके विशेष झूलामे राखिके झुलेबाक एहि पर्वक मुख्य विधि थिक। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भोटे कोसी नदीमे गेल बाढ़िसँ पैघ आ भारी मानवीय आ भौतिक क्षति भेलाक कारणे पुनर्निर्माण पुनरुत्थानक लेल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यकता पर बात बतौलनि अछि। परराष्ट्र मंत्रालय में आई आयोजित पत्रकार सम्मेलन में परराष्ट्र मंत्री खनाल बीतल बुध दिन गेल बाढ़ आ भूस्खलन सँ नेपाल में भारी मानवीय आ भौतिक क्षति भेलाक कारणे ई विपद प्रभावित क्षेत्रक लेल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपरिहार्य भेल बतौलनि। बाढ़ सँ एहिठाम भारी संख्या में मानवीय आ भौतिक संरचना में क्षति पहुँचलक अछि। ओ कहलनि एखन धरि हमसब बाढ़ में पड़लाक कारणे स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकक उद्धार के पहिल प्राथमिकता में राखि कऽ काज कऽ रहल छी। मंत्री खनाल विपद के निश्चित चरण भेलाक कारणे सरकारक एखन प्राथमिकता उद्धार करबाक आ सकबा धरि नेपाली तथा विदेशी नागरिकक ज्ञान जोगेबा दिस केन्द्रित भऽ रहल स्पष्ट कयलनि। उद्धार पश्चात सरकार जल्दिए राहत के चरण में प्रवेश करत आ तेसर चरण में हमसब पुनः स्थापना आ पुनर्निर्माण में लागब, मंत्री खनाल कहलनि। एखुनका लेल व्यक्ति के विद्यालय व अन्य सामुदायिक ठाम में राखल गेल अछि। ओ पड़ोसी राष्ट्र सब संग विशेष कर सुरंग उद्धार आ फरेंसिक सहित सहायता मांग कयल बतौलनि। मंत्री खनाल दाता सम्मेलनक विषय में परराष्ट्र मंत्रालय अर्थ मंत्रालय बीच आवश्यक समन्वय कर दाता सम्मेलनक विषय में आवश्यक निर्णय लेबाक बतौलनि। ओ भोटे कोसी बाढ़ नेपालक हित किछु सीमित जिला में मात्र प्रभाव कयल कहैत नेपाल के काठमांडू पोखरा लुम्बिनी चितवन आ सगरमाथा सहित प्रमुख पर्यटकीय गंतव्य सुरक्षित आ खुला रहल जानकारी देलनि। ओ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नेपाल भ्रमण करबाक लेल सुरक्षित रहल संदेश प्रवाह करबाक लेल सेहो आह्वान कयलनि अछि। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी भोटे कोसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध करबाक विषय में आइ संघीय सांसद सँ छलफल कयलनि अछि। छलफल में मंत्री चौधरी बाढ़ प्रभावित नागरिक के राहत खाद्यान्न स्वच्छ पेयजल औषधि लत्ता कपड़ा सहित अत्यावश्यक सामग्री शीघ्र पहुँचबाक लेल संबंधित निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहल बात पर जोर देलनि। मंत्री चौधरीक सचिवालय के अनुसार ओ प्रभावित नागरिकक आवश्यकता पहचान कर राहत सामग्रीक आपूर्ति तथा वितरण के व्यवस्थित आ प्रभावकारी बनेबाक लेल आवश्यक कार्ययोजना आगू बढ़ेबाक बात बतौलनि। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्रीक आपूर्ति तथा वितरण के लेल सरकारी निकाय स्थानीयतः संबंधित पक्ष बीच समन्वय कर तत्काल आवश्यक सहयोग उपलब्ध करबाक विषय में छलफल भेल छल। छलफल में प्रतिनिधि सभा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिक सभापति अशोक कुमार चौधरी कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिक सभापति समीक्षा बासकोठा सांसद सुरेश चौधरी सांसद जनक सिंह धामी सांसद ओजस्वी श्रीचंद सांसद धर्म केसी सांसद अनुष्का श्रेष्ठ सांसद श्रद्धा कुंवर सांसद सृजना श्रेष्ठ आ सांसद राम लामा सहभागी छलनि। भोटे कोसी नदी में गेल बाढ़ सँ 9 जल विद्युत आयोजनक 537 गोटे कर्मचारी तथा श्रमिक एखन धरि संपर्क विहीन भेल समाचार प्राप्त भेल अछि। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक सभक संस्था नेपाल इप्यान के अनुसार रसुआ आ नुआकोट में रहल 9 जल विद्युत आयोजना में कार्यरत 898 गोटे संपर्क विहीन भेल छलथि। एहि मध्य 361 गोटे के उद्धार भऽ चुकल अछि। 216 मेगावाट क्षमताक मथिलो त्रिशुली एक जल विद्युत आयोजना सँ
576 गोटे सम्पर्क विहीन भेल मध्य 254 गोटे को उद्धार भ चुकल अछि। ओहि आयोजनक सुरंग में एखनो 300 गोटे श्रमिक तथा कर्मचारी फसल बताओल गेल अछि। एखन ई सुरंग मार्ग में खोजी भ रहल अछि। अहिना 111 मेगावाट क्षमताक रसुआगढ़ी जल विद्युत आयोजना से सेहो 93 गोटे सम्पर्क विहीन भ रहल अछि। रसुआ भोटे कोसी जल विद्युत आयोजना से 4 गोटे सम्पर्क विहीन भेल ई 5 जनौलक अछि। लांगटांग खोला जल विद्युत आयोजना सँ 42 गोटे सम्पर्क विहीन भेल मध्य एखन धरि 18 गोटे के उद्धार भेल अछि। एहि तरह चिलमे हाइड्रो पावर सँ 8 गोटे सम्पर्क विहीन भ रहल अछि। मैलुंग खोला हाइड्रो पावर सँ 7 गोटे सम्पर्क विहीन भेल छल आ एखनो भेल अछि। त्रिशूली जल विद्युत आयोजना सँ 1 गोटे सम्पर्क विहीन भेल अछि। त्रिदेवी घाट जल विद्युत आयोजना सँ 1 गोटे सम्पर्क विहीन भ रहल अछि। माथिलो त्रिशूली 3A जल विद्युत आयोजना सँ 42 गोटे सम्पर्क विहीन भेल अछि। माथिलो त्रिशूली 3B जल विद्युत आयोजना सँ 122 गोटे सम्पर्क विहीन भेल मध्य 91 गोटे के जीवित उद्धार कयल गेल अछि। मिडल त्रिशूली गंगा जल विद्युत आयोजना सँ 2 गोटे सम्पर्क विहीन भेल अछि। रसुआक भोटे कोसी में आयल बाढ़िक उद्गम स्थल लहंदे खोला में पुनः 2 छोट छोट ताल सब निर्माण भेल विज्ञ सब बतौलक अछि। हिमाल हिमनदी आ हिम भूस्खलन संबंध में अध्ययन अनुसंधान में संलग्न चीनिया वैज्ञानिक गुओ सियोंग चंग सार्वजनिक कैल सैटेलाइट तस्वीर में हिम आ भूस्खलन गेल निचका भाग लहंदे खोला में लगातार 2 छोट छोट ताल निर्माण भेल देखल गेल अछि। चीनिया वैज्ञानिक गोसियोंग चांग संग अध्ययन अनुसंधान में संलग्न नेपाली वैज्ञानिक डॉक्टर नितेश खड़का अनुसार नेपालक सीमाना भीतर 2 छोट छोट ताल सब देखब ई तालक पानि ओहि समय बहि सकबा कारणे निचका तटकीय क्षेत्र में सुरक्षाक मापदंड अपने आप जरूरी रहल बताओल गेल अछि। हुनका अनुसार ई दुनू ताल फुटला पर निचका तटीय क्षेत्र में पहले जकाँ भारी जोखिम तऽ नहि होयत मुदा संभावना देखल गेल अछि। हुनका अनुसार भारी तरहक विस्फोटन भ चुकला कारणे आब निचका तहमे जोखिम शून्य प्राय भ चुकल अछि। आब उगतेबाक आ चिंतित हेबाक अवस्था नहि रहल अछि। तथापि छोट छोट नदीसँ ई लेदो थाल बहलाक कारणे संभावित भ सकबाक असर प्रति सचेत होयब आवश्यक देखल गेल डॉक्टर खड़का कहलनि। रसुआक भोटोकोसी बाढ़िक कारण प्रभावित सभक उद्धारक क्रम में नेपाली सेनाक हेलीकॉप्टर द्वारा आई दिन के 43 विदेशी सहित 208 नागरिक त्रिशूली 3 जल विद्युत आयोजनक सुरंग सँ उद्धार कयल गेल अछि। सुरंग में रहल 38 गोटे चीनिया आ 5 गोटे भारतीय सहित 208 गोटे के उद्धार कयल नेपाली सेना जनौलक अछि। उद्धारक लेल रहल संयुक्त टोली ड्रिलिंग मशीन सहित सामग्रीक प्रयोग कऽ सुरंग के बाहर भाग पता लगेबाक प्रयास भ रहल जनौलक अछि। संगे प्रभावित जिला रसुआ नुआकोट धादिंग सहित नेपाली सेनाक लगभग 7,000 सँ अधिक फौज खटि चुकल आ समन्वयात्मक रूप में घायल सभक खोज तथा उद्धार कर आपातकालीन उपचार तथा लाश व्यवस्थापन कार्य भ रहल सेना जनौलक अछि। बाढ़िक कारण प्रभावित बनल नुआकोट स्थित माथिलो त्रिशूली 3B जल विद्युत आयोजना सभक सुरंग भीतर फसल सब सुरक्षित उद्धारक लेल नेपाल सरकार विशेष संयंत्र परिचालन करैत निरंतर प्रयास जारी रखने अछि। अत्यंत जोखिमपूर्ण प्राविधिक रूप में जटिल मानल गेल ई उद्धार कार्य के थप प्रभावकारी बनेबाक लेल नेपाल सरकारक अनुमति में प्राविधिक रूप में उच्च दक्ष चिनिया ब्रिगेड टोली के परिचालन कयल गेल अछि। सरकारक अनुमति पश्चात 6 गोटे सम्मिलित चिनिया ब्रिगेड टोली मैदान में खटल अछि। चिनिया हेलीकॉप्टर मार्फत सोझे त्रिशूली अवतरण कयल ई टोली नेपाली सेनाक बिग टोली संग समन्वय सहकार करैत संयुक्त रूप में उद्धारक काज शुरू कऽ रहल अछि। रसुआक भोटे कोसी नदी आयल बाढ़ि पश्चात हरा रहल मध्य प्रदेशक 171 गोटे मध्य एखन धरि 22 गोटे परिवारक संपर्क में आयल अछि। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामक प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपेक्षक प्रभु प्रसाद ढकालक अनुसार बाढ़ि में पड़ि कऽ प्रदेशक 171 गोटे हरा रहल आ एखन धरि टेलीफोन मार्फत 22 गोटे के संपर्क में आयल समाचार प्राप्त भेल अछि। सप्तरी के 45 गोटे, परसा के 39 गोटे, रोथट के 17 गोटे, बारा के 23 गोटे, सरलाही के 15 गोटे, महतरी के 17 गोटे, आधनसा के 5 आ सिराहा के 10 गोटे संपर्क विहीन रहल। विवरण प्राप्त भेल
वरिष्ठ प्रहरी उपेक्षक ढकाल जानकारी दिलन। सम्पर्क विहीन मध्य आई भिनसर धरि में परसाक पोखरिया नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के ओजीर अंसारी, वीरगंज महानगर पालिका रहित आयल सिंधलिक ज्ञान बहादुर सिंह, बारा कलैया उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 22 के सत्यम राम, जितपुर सिमरा उप महानगर पालिका 12 के रोजित कुमार साह, स्वर्णगांव पालिका वार्ड नंबर 3 के रूपेश गुप्ता सम्पर्क में आयल प्रवक्ता ढकाल बतौलन। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुरंग में फंसे लोगों के बचाव के लिए सरकार के समन्वय में भारत और चीन की टीमें तैनात। रसुआ के भोटेकोशी बाढ़ में अब तक 675 लोगों की मौत की पुष्टि। 2498 लोग अभी भी लापता। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, पर राष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल का कथन। और यूक्रेन की राजधानी कीव के पास स्थित हथियारों के गोदाम पर रूसी हमला, कम से कम 37 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि आपदा से हुए भारी नुकसान के पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की जरूरत है। परराष्ट्र मंत्रालय में आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में परराष्ट्र मंत्री खनाल ने बताया कि पूर्वाधार सड़क नेटवर्क, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक क्षति हुई है और वर्तमान में नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। परराष्ट्र मंत्री खनाल ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन का काम पूरा होने के बाद ही पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक योजना और सहयोग का खाका तैयार किया जाएगा। मंत्री खनाल ने बताया कि आपदा के बाद बचाव और राहत के लिए पड़ोसी देश भारत से अब तक 57 टन से अधिक राहत सामग्री प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से भी आवश्यक राहत सामग्री प्राप्त हो रही है। मंत्री खनाल ने कहा कि बचाव और खोजी अभियान जारी होने के कारण मृतकों, लापता लोगों और क्षति के आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। उन्होंने नेपाल सरकार आम नागरिकों तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों से केवल आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई सूचनाओं पर विश्वास करने और अपुष्ट रिपोर्टों को प्रकाशित या प्रसारित न करने की अपील की। बाढ़ के कारण कई विदेशी नागरिकों के भी लापता होने के चलते मंत्रालय में एक अलग आपातकालीन नियंत्रण कक्ष, इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मंत्री खनाल ने बताया कि नेपाली सुरक्षा एजेंसियां और अन्य टीमें स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल रही हैं, लेकिन पड़ोसी देशों से विशेष रूप से सुरंग बचाव और फॉरेंसिक कार्यों के लिए सहायता मांगी गई है। उन्होंने बताया कि सुरंग बचाव के लिए भारत से 11 सदस्यीय विशेषज्ञ तकनीकी टीम पहले ही तैनात की जा चुकी है। सरकार ने दाता सम्मेलन के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मंत्री खनाल ने स्पष्ट किया कि विदेश मंत्रालय और अर्थ मंत्रालय के बीच समन्वय कर दाता सम्मेलन के बारे में आवश्यक निर्णय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोटेकोशी बाढ़ का प्रभाव नेपाल के कुछ सीमित जिलों तक ही पड़ा है। उन्होंने जानकारी दी कि काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी, चितवन और सगरमाथा सहित नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थल सुरक्षित और खुले हुए हैं। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के कारण रसुआ और नुआकोट के बिजली उत्पादन गृहों की सुरंगों में फंसे लोगों के बचाव के लिए सरकार के समन्वय में मित्र राष्ट्र भारत और चीन की टनल रेस्क्यू टीमें तैनात की गई है। नेपाली सेना अपने संसाधनों से सुरंगों में फंसे नागरिकों की खोज और बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं। हालांकि बंद सुरंगों में फंसे जीवित नागरिकों के बचाव तथा मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण और शव गृह प्रबंधन के लिए भारत और चीन से सहयोग लिया जा रहा है। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय के सह सचिव एवं प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री ने रेडियो नेपाल को दी। प्रवक्ता पौडेल ने बताया कि भोटेकोशी नदी की बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव, राहत और पुनर्वास के लिए भारत, चीन सहित विभिन्न देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय दाता निकायों और संस्थाओं से सहयोग प्राप्त हो रहा है। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता पौडेल के अनुसार भोटेकोशी नदी की बाढ़ में फंसे विभिन्न देशों के 120 से अधिक विदेशी नागरिकों का बचाव किया जा चुका है और अभी भी करीब 500 विदेशी नागरिक लापता है। मंत्रालय के अनुसार चीन सरकार 30 बेली ब्रिज और 2000 शवों के प्रबंधन के लिए एयर टाइट बैग उपलब्ध कराने वाली है। रशुआ में आए विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 675 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 2498 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से रसुआ में 13, नुआकोट में 51, धादिंग में 45, चितवन में 246, गोरखा में 57, तनहू में 35, नवलपरासी पूर्व में 165 और नवलपरासी पश्चिम में 66 शव मिले हैं। अब तक 2301 लोगों का उद्धार किया जा चुका है। वहीं विभिन्न स्थानों से उद्धार किए गए गंभीर घायलों को इलाज के लिए काठमांडू घाटी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया, जिनमें से 140 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेता भीष्म राज आङदेम्बे ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह बालेन से मुलाकात कर भोटेकोशी बाढ़ प्रभावितों के बचाव और राहत के लिए सरकार का ध्यानाकर्षण कराया है। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आज हुई मुलाकात में नेता आङदेम्बे ने बाढ़ प्रभावित नुआकोट के ढूंगे बाजार, देवी घाट समेत विभिन्न क्षेत्रों का स्थलगत निरीक्षण करने के बाद सरकार को 9 सूत्रीय ध्यानाकर्षण पत्र सौंपा। उन्होंने रसुआ, नुआकोट और धादिंग में राहत एवं बचाव के दौरान सामने आई समस्याओं का तत्काल समाधान करने तथा हवाई बचाव अभियान को और प्रभावी बनाने की मांग की। नेपाली सेना के बचाव कार्य की सराहना करते हुए उन्होंने रसुआ और नुआकोट के लिए अलग अलग हेलीकॉप्टर बचाव इकाइयां तैनात करने का भी आग्रह किया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलिकम को 4G